0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन

0: में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखे।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

0: कुछ किताबां पढ़न वालियां हुंदियां ने, कुछ किताबां सांभण वालियां हुंदियां ने, ते कुछ कु किताबां कोट कोट के पीण वालियां हुंदियां ने।
1: आओ हुण सरवण करदे हां भगती संगीता प्रोग्राम आराधना।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्रीराम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। परिचय है और जानकारी दी थी आज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम से। सोनी सिर प्रोग्राम 7:02 से 8:40 तुम सुनोगे पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब की। सवेरे 9:02 से पेश करांगे फिल्म संगीत का प्रोग्राम। अज के इस प्रोग्राम ची फिल्म चलते चलते दे गीत सुनोगे। NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग सवेरे 9:30 पेश किया जाएगा। 10:02 से पेश करांगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश। तमक जलंधर पैंती प्रोग्राम होएगा 11:05 से। वसदे वेड़े प्रोग्राम का समा 12:05 का रहेगा। इस प्रोग्राम च अज उडारियां सिलसिले तहत रंजना छाबड़ा होना नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी ते नाल ही पेश करांगे आज का खास सिलसिला।

डवेसा फौजी वाले प्रोग्राम होएगा सवा एक बजे, बाद दोपहर 2:30 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। रंगली धरती प्रोग्राम चाहे तुसी राजकुमार ते साथियों पासो माता दियां पेटा सरवण करोगे। दूजी सभा च शाम 4:02 बजे ते पंजाबी फिल्म संगीत का प्रोग्राम होएगा। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। शाम 5:30 बजे सरवण करोगे प्रोग्राम गुरबाणी विचार। देहाती प्रोग्राम शाम 6:30 बजे होएगा। इस प्रोग्राम च कम दियां गल्लां मंडियां दे भाव दे नाल ही सारा साल हरे चारे बारे मनप्रीत जैत का जानकारी देणगे। शाम 7:40 ते तुसी सुनोगे अंग्रेजी वार्ता स्क्रीन वायलेंस रियल इंपैक्ट। वार्ताकार होणगे डॉक्टर नम्रता जोशी। जिंदगी हसीन प्रोग्राम रात 8 बजे पेश किया जाएगा। रात 9:30 बजे पेश करांगे प्रोग्राम खेड संसार। खेड संसार प्रोग्राम च आज बॉक्सिंग एथलीट कृष्णा वर्मा होना नाल कीती मुलाकात सुनाई जाएगी। रात 10:02 बजे ते शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुनोगे सुर साधना। अज दे इस प्रोग्राम च डॉक्टर राय बहादुर सिंह हुणां दा शास्त्रीय गायन सुनोगे रागपुरी। अज DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र ते 3 बजे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां पेश किया जाएगा। 100.6 MHz ते विविध भारती ते 10:05 बजे ते 10 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगला पंजाब।

0: क्रमेषु भागं गृहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदय सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्यरूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीडा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमानकर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्साविभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343 एरे 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश ने आज दिया हुण तक दिया मुख्य खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन विखे साल 2026 ले 66 उगियां शख्सियतां नूं पद्म पुरस्कार प्रदान कीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज तो सिक्किम दे 3 दिनां दौरे ते होणगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रीख्या विच वार वार आ रहियां खामियां ते चिंता प्रगट करदियां कहा कि यह दुख की गल है कि नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने पिछले पेपर लीक तो कोई सबक नहीं सीख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मनोरंजन ते मेहमान नवाजी संस्थावां विच बाल मजदूरी ते सख्त पाबंदी लगाउण दी मंग करन वाली एक जनहित पटीशन ते केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी कीता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवी दिल्ली विच जापान दे विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु नाल गलबात कीती। सरकार देश विच पेट्रोलियम उत्पादां दी सुचारू सप्लाई यकीनी बनाउण लई हर संभव कोशिश कर रही है। पंजाब विच नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई अज वोटां पै रहीआं ने। सड़क आवाजाई ते शहरा मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश विच 1947 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय शहरा प्रोजैक्टां दी प्रगति दी समीख्या कीती। पंजाब सरकार वालों ईद उल जुहा बकरीद के संबंध में सूबे के समूह सरकारी दफ्तर, बोर्डा, कारपोरेशन ते सरकारी विद्यक अदारिया विच 28 मई नू गजटड छुट्टी का ऐलान ते मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों दौरान पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच

देखो जी, असल रंगरेस तो उस कुदरत नूं कहा गया है जो सूरज दीआं सुनहरी किरणां दे नाल एक बहुत ही खूबसूरत रंग धरती ते पैदा करती है। अजिहा उज्ज्वल रंग जिस नाल हरेक चेहरिआं ते चमक आ जाती है, रोशनी आ जाती है। वह रंगरेस फुल्लां च अलग अलग तरह के रंग भरदा है, पंछियां दे खंभां ते वह रंग उकरदे ने। ये रंग साडी जिंदगी दे विच किसी ना किसी रूप दे विच नज़र आउंदे ने। पानी का रंग, कुदरत का रंग, पत्तियां का रंग, फुल्लां का रंग ते होर भी बहुत सारे रंग जिन्हां दे नाल लगता है कि जिंदगी वाकई किन्नी रंगीन है, किन्नी खूबसूरत है। सवेर की ठंडी हवा, चढ़दा सूरज, चिड़िया की मिठी चहचहाट ते चाह की खुशबू, ये सब मिलकर जिवें अज कह रहे होण कि हर सवेर सिर्फ 24 घंटे की नहीं ये एक बार फिर आँदी, बल्कि ये नवीं उम्मीदा, नवे विचार ते नवीं संभावना भी लियाउंदी है। कल दीआं चिंतावां, कल दी थकावट ते कल दीआं गल्लां नूं थोड़ा पिछे छड्ड के अज दा दिन एक नवीं सोच दे नाल शुरू करिए। जिंदगी हर सवेर सानूं याद दिलाउंदी है कि जे सूरज हनेरे तो बाद चढ़ सकदा है तां असीं वी मुश्किलां तो बाद मुस्कुरा सकते हाँ। ते अक्सर असीं दौड़दे दौड़दे भुल जांदे हाँ कि खुशियां वड्डियां चीज़ां विच नहीं बल्कि छोटियां छोटियां गल्लां विच छुपियां होंदियां ने। जदों तुसीं सुत्ते हुंदे हो तुहाडी माँ की आवाज़ या अपने किसी प्यारे की आवाज़ जो तुहानूं जगाउंदी है तां सवेर होर सोहणी लगन लग जांदी है। इस तरह सवेर की ताज़ी हवा भी तुहानूं याद दिलाउंदी है कि कुदरत दे विच किन्नी खूबसूरती है। इसलिए थोड़ा समा अपने लिए कड्डो, कुदरत लिए कड्डो। मोबाइल की स्क्रीन तो कुछ पल दूर हो के अपने आले दुआले की खूबसूरती नूं माणो। तो जे तुसीं इस वेले सैर कर रहे हो, हौली हौली चलो तो डूंगा साह लवो, कुदरत नूं महसूस करो। तो जेकर काम लई तैयार हो रहे हो तो अपने दिन की शुरुआत चंगी सोच के नाल, पॉजिटिविटी नाल करो। सोहणे सिर प्रोग्राम तुहाडे नाल बनिया रहेगा आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। प्रोग्राम सुनने वालों नूं पूनम दा नमस्कार।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: सोने से प्रोग्राम तुसी इस वेले आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते सुन रहे हो। 7:32 हो गए ने। 26 मई दा अज दिन है ते जेकर अज दे दिन अज दी तरीक दे नाल याद आउंदा कोई जरूरी काम है तुहानू तां तुसी सोच सकदे हो कि अज दी तरीक दे विच कोई जरूरी काम तां नहीं करन वाला। वैसे सोचिया तां इह वी जाणा चाहीदा कि अज दे दिन असीं किहड़े जरूरी काम निपटाउणे ने, क्योंकि हर दिन सानू इह मौका दिंदा है, इह बहुत ही जरूरी सुनेहा दिंदा है कि एक एक पल कीमती है ते असीं इसनू किवें भरपूर इस्तेमाल करना है।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।

जीने लगा वही जिसे इश्क ने मारा। इसे गीत तो मिर्जा गालिब होना का शेर भी याद आता है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पिदम निकले। किन्नी खूबसूरत गल है ना। सो ए गीत संगीत ए शेरो शायरी खूबसूरत अंदाज दे विच साडे कोल जिवें एक सौगात दे वांग है। तुसीं इन्हां गीतां नूं सुन के महसूस किया होएगा कि मौसम चाहे किहो जिहा ही होवे, कंडीशन साडे जिंदगी दे विच किहो जिहा क्यों ना होण, पर ए संगीत मन नूं हल्का कर देंदे ने, तरोताज़ा कर देंदे ने। तो तुहाडा अज दा दिन इस तरह तरोताजगी दे नाल भरपूर रहे, खुशनुमा रहे, इसी उम्मीद दे नाल ही अज दा ए प्रोग्राम खत्म करन दी मैनूं पूनम नूं हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा

0: उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार।

0: चार जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले

0: ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज।

0: चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda, focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok.

0: जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब दी। इस प्रोग्राम का पहला गीत मिनी पंजाब फिल्म चो अलका याग्निक ते गुरदास मान होना लगाया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ।

बहुत ही हैरानीजनक भी। दिलचस्प गल ये है कि राणी मुखर्जी नूं ये रोल सब तो पहले ऑफर होया सी, पर उन्होंने साथियों की शूटिंग करके इस नूं मना कर दिता सी, पर बाद विच वो फिर इस फिल्म दे नाल जुड़ गए सन। ते ये फिल्म सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि विआह तो बाद आने वाली मिस अंडरस्टैंडिंग्स ते होर इस तरह दी अड़चना नूं दिखाउंदी है, ते इसलिए इस नूं रिश्तियां प्रति एक संवेदनशीलता दे नाल बेहतरीन मूवी मन्या जा सकता है। ये कहा जाता है कि शूटिंग दौरान शाहरुख खान बैक इंजरी नाल जूझ रहे सन, फिर भी उन्होंने फिल्म नूं जारी रखिया, ते इस तरह ये फिल्म ते इसके गीत काफ़ी पसंद किए गए। हुण इस फिल्म चो अगला गीत सुनाउण जा रही हां सोनू निगम ते साथियों की आवाज़ विच है, आओ सुनते हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों।

0: अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।

0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
1: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता

0: से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
1: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
1: Sir.
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
1: सर।
2: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।

0: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: तुसी सुन रहे सी NCERT वालों स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।
6: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा खूबसूरत उपराला प्रोग्राम खेड संसार।

हर मंगलवार रात 9:30 बजे। क्रिकेट स्टेडियम कौन कर रहा है चौकियां छिकियां दी बरसात, हॉकी च किन्ने गोल दाग के किनू दिती मात, कुश्ती दे गद्दियां ते दाल आके कौन जितया बाजी, ते किन्ने सुनहरे निशाने ला के देशवासियां नू कीता राजी। खेड मैदानां दी दिलचस्प कहानी, खिडारियां दा जनून उनां दी ही जुबानी। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 meters ਯਾਨੀ 873 kHz 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼।

0: हेलो, फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है तो इस प्रोग्राम से अगले कॉलर दोस्त देखते हैं किड़े आई नहीं। हेलो हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हो जी?
1: अजीत सिंह बोल रहा हूँ, सरसा जाना जी। गाना क्या मोहम्मद रफी, आज कोई भी सुना दो।
0: अच्छा जी, ठीक है जी, जरूर सुनावांगे। मोहम्मद रफी उन्होंने आवाज़ भी, तुसी कोई भी गीत सुनना चाहते हो? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इन्होंने मोहम्मद रफ़ी हुणां दी आवाज़ विच कोई भी गीत सुनने की फरमाइश की है, तो एक गीत असीं चुन के लैके आए हैं तीसरी मंजिल फिल्म च उन्होंने पसंद, ते आवाज़ मोहम्मद रफ़ी हुणां दी है, नाल आशा भोसले होनी।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ
2: ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਮ।
1: ਨਮਸਕਾਰ
2: ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬੰਡਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਂ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਸੇ ਕਾਲ ਕੀਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਆ ਆਪਕਾ?
2: ਚਰਨ ਸਿੰਘ।
1: चरण सिंह जी, क्या करते हैं आप?
2: जी जी जी,
1: क्या काम करते हैं जी आप?
2: किसान हूँ, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, जलंधर आकाशवाणी सुनते रहते हैं।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आपको जो पंजाबी कार्यक्रम है वो समझ आते हैं?
2: हाँ आते हैं, हम तो सुनते रहते हैं।
1: पंजाबी गीत अच्छे लगते हैं?
2: जी जी जी, अच्छे लगते हैं।
1: या फिर इसी कार्यक्रम में फोन करते हैं
2: जी? हाँ।
1: गाना कौन सा सुनेंगे आज?
2: प्रेम पुजारी का ओ रंगीला रे।
1: ठीक है जी, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास के खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरा होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है।

0: अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इस बीच मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने लोगों से बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही सतर्क रहने का भी आग्रह किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ फाजिलगा, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ कसौली, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। स्टूडियो घड़ी के मुताबिक इस वेले 11:05 हो गए ने। तुहाडा दोस्त गौरव तुहाडे नाल जुड़ गया जो शाम 5 बजे तक तुहाडे नाल रहेगा और प्रोग्रामां दा सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। फिलहाल समा हो गया है साढ़े प्रोग्राम धमक जलंधर पैंती दा। यो प्रोग्राम है जिहदे विच तुहाडे मैसेज जिहड़े साढ़े कोल पहुँचदे ने उहनां दे विच जिहड़ियां फरमाइशां कीतियां जांदियां जिहड़े गीत संगीत दी उह चलाया जांदा है। जिन्हां ने भी सवेरे 10 बजे तो लै के 10:30 बजे तक अपनियां फरमाइशां साढ़े वट्सएप नंबर 94-655-36-077 इस नंबर ते भेजियां सन, उन्हां सारिआं दी फरमाइशां नूं पूरी करन दी कोशिश करांगे। फिलहाल रब दा नां लैके शुरू करदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

जी बिल्कुल, हंसना ज़रूर चाहिए है और मैसेज भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैसेज करोगे तो सानू पता लगेगा कि तुसी साढ़े नाल जुड़े हुए हो, साढ़े गल्लां बातों ते हंस रहे हो और पूरा का पूरा आनंद जड़ा है वो माण रहे हो। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है तुहाडा सारिआं दा, अपना धमक जलंधर पैंदी और धमक दूर दूर तक पैनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैसेज मैनू आ गया है नवीं दिल्ली तो, गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवीं दिल्ली तो साढ़े नाल जुड़ गए ने। जी आया नो जी, सत श्री अकाल जी। बलविंदर सरां और उन्होंने नाल गुणतास, रमनदीप और मनिंदर सिंह, पिंड जिहड़ा है इन्हां दा मोरजड़ सिखां है हनुमानगढ़ ज़िले तो साढ़े नाल जुड़े ने। कहिंदे गीत कोई भी चला दिओ, बस इसी तरह साढ़े नाल जुड़ते रहना। और एक होर मैसेज आया पर उहदे विच उन्होंने फोटो भेजी है। देखो वैसे फोटोआं खिचाण दा शौक तां सारिआं नूं ही हुंदा है, मैनू भी बहुत है, पर इस प्रोग्राम दे विच फोटो नहीं चल सकती क्योंकि रेडियो ते हजे तक फोटो आ ही नहीं सकती, इदां दी टेक्नोलॉजी नहीं बनी। तो इस करके तुसी सिर्फ अपने मैसेज भेजने हैं, मैसेज दे विच अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, जिहड़े गीतकार का गीत सुनना चाहते हो, जिहड़े गायक का तुसी गीत सुनना चाहते हो, बस उहदा नाम लिख के भेजो, असीं चला देंगे। फोटोआं साढ़े तक पहुँचदियां ही नहीं। ज़िला फाजिलगा पिंड बाजीदपुर और करन वाले ने मैसेज, बलजीत सिंह, बलदेव सिंह पेंचरा वाला, जग्गा सिंह मैंबर और वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह, कहिंदे गीत सुना दिओ, बस साढ़े नाल प्रेम प्यार इदां ही रखना जी। प्रेम प्यार इदां ही रखांगे, बस फोटोआं नहीं भेजनियां तुसीं, साडा ध्यान भंग हो जांदा फोटोआं देख के। प्रोग्राम चल रहा है धमक जलंधर पैंदी। बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय टिंगिया, नमन अपार, कहिंदे ने आदरणीय प्रसारक जी को नमस्कार, प्लीज़ हमारे गीत को और हमें शामिल कर लीजिए। तुसी दिल दे विच बिल्कुल शामिल हो, जिवें मजनू दे टिल्ले तो कमल बलूजा, मधु सागर, उमंग आकांक्षा, गुड़िया माही, मलिक इशिता अरोड़ा ते सारा दा सारा अरोड़ा परिवार साढ़े नाल जुड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई, दिल्ली तो बहुत सारे मैसेज आ रहे ने। उम्मीद है साडा प्रोग्राम उहनां दे दिलां दे विच ठंड पा रहा हो गया, क्योंकि दिल्ली दे विच गर्मी जिहड़ी है अमूमन इहनां दिनां दे विच वध जांदी है। तो आओ फिर अगले गीत वाल नूं रुख करिए, क्योंकि हुण सानूं आवाज़ दित्ती है हंस राज हंस होरां ने, कहिंदे प्रोग्राम अगे निकल चला है ते तुसी मेरा गीत नहीं चला रहे। ये इदां नहीं हो सकदा, हंस राज हंस जी दी आवाज़ है और गीत चलान जा रहे हैं। उम्मीद है इस गीत तुहानूं सारिआं नूं बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये गीत है ही इन्ना वधिया। तो आओ फिर सुनिए हंस राज हंस जी दी ये आवाज़। और वैसे हाले सौण दा महीना आया तो नहीं है, पर गर्मी जिन्नी को हो गई है ना, दिल करदा सौण दा महीना पहले ही आ जावे, जिद्दां हंसराज हंस जी लैके आ रहे ने।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकियां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही।

0: आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश कर रहे हैं प्रोग्राम वस्ते विड़े।

0: बहुत ही सोहना गीत है। देखो
1: जी
0: ये गीत ना ना सिर्फ मन नू खुश कर गया बल्कि पैर थिरकण दे लई भी मजबूर कर गया।
1: बिल्कुल जी, और किते ना किते सानू ये भी दस गया कि हसना मुस्कुराना बड़ा जरूरी है, ते जिंदगी दे विच जेकर हसना मुस्कुराना ना होवे ते जिंदगी बड़ी बेरंग जी लगती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुसी। हुण इस खूबसूरत गीत तो बाद आपां हुण अगले सिलसिले वल चलिए।
1: जी हाँ, असी उडारियां नूं किस तरह भुल सकते हाँ। सो जी, उडारियां दा समां जिहड़ा हो चुक्या है,
0: जी
1: ते एक ही वो प्रोग्राम है जिहदे विच असी साडियां भैणां दी उडारी नापदे हाँ। सानूं उहनां तों सेध मिलदी है कि जरूरी नहीं हुंदा कि सानूं परोसी हुई थाली ही सारी उम्र मिलती रहे। कई वारी सानू जिंदगी दे विच मेहनत है ना जिहड़ी उह जरूर करनी पैंदी है, ते मेहनत करके ही असी उडारियां वर्गे प्रोग्राम दा हिस्सा भी बन सकदे हां, क्योंकि असी दूजे लोकां नूं प्रेरणा देण दे काबिल हो जांदे हां।
0: सो उडारियां सिलसिले तहत अज इहो जिही प्रेरणादायक शख्सियत दे नाल तुहानूं मिलाउण जा रहे हां। रंजना छाबड़ा होणा दे नाल कीती गलबात आओ सुणदे हां। उडारियां प्रोग्राम च असीं एक बार फिर हाजिर हां ते अज इस प्रोग्राम च तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हां डॉक्टर रंजना छाबड़ा होणा दे नाल, जो कि एज़ एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर होए ने ते भावां नूं जज्बात नूं बयान करन वाली बड़ी सोहणी विधा दे नाल जुड़े हुए ने, यानी कि क्लासिकल डांस दे नाल। इन्हां दी जिंदगी ते झात मारांगे, इन्हां दे नाल असीं अज सांझ पावांगे गलबात दी। सब तो पहला स्वागत करांगे डॉक्टर रंजना छाबड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो च।
2: शुक्रिया जी, नमस्कार सारिया नूं, आ तुहानूं वी ते दर्शकां नूं वी।
0: जी डॉक्टर रंजना जी, एक किसी विद्वान ने कहा है कि जो डांस है ना, वो साड़ी आत्मा दा नृत्य है।
2: बिल्कुल
0: जदों साड़ी
2: तुसीं
0: आत्मा
2: ठीक।
0: नचदी है उदों असीं नचण दे लई मजबूर हो जांदे हां।
2: बिल्कुल,
0: ते तुहाडी आत्मा ने तुहानूं कदों दस्सिया कि तुसीं डांस वल जाणा चाहुंदे हो?
2: बचपन च ही शौक, जिस तरह घर च दो तीन बच्चे होंगे है या जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे बच्चे होंगे है, तो हर बच्चे की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होंगी है या स्पेशल होंगे, किसी कोई गा लैंदा, कोई म्यूजिक करता है, कोई कुछ करता है।
0: जी
2: तो मैं जदों भी बचपन तो ही कुछ म्यूजिक बजता सी, मेरे पेरेंट्स भी मैनू दसते सी कि जदों छोटे बहुत सी गोदी च भी सी जदों कोई म्यूजिक करता तुसी हिलन लग जाते सी,
0: अच्छा ठीक
2: ते
0: है।
2: फिर वो बस करते करते बचपन तो ही शौक सेगा। फिर थोड़े वड्डे बस डांस नू, अज तो मैं 66 बॉर्न हाँ,
0: जी
2: ते उदों डांस नू इन्ना अच्छा तो नहीं मनते सी, सिखाना अच्छा नहीं, मतलब घर च करो चलो करो, पर जदों जदों वड्डे हुए 10

0: ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਤੇ ਵੇੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश

0: मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। ਸਰੋਤਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਚਲੀਏ ਪਰਿਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ।

जय हिंद फौजी वीरो, तुहाडा दोस्त गौरव हाजिर है लै के प्रोग्राम फौजी वीरा लई। एक बारी सारिआं नूं धन्नवाद, जिहड़े भी फौजी वीर जां जिहड़े भी देश दे नागरिक देश दे लई देश दे प्रति अपने फर्ज निभा रहे ने, साडे सारिआं दी रक्षा कर रहे ने, उहनां सारिआं नूं जय हिंद और बहुत बहुत धन्नवाद देना बनदा है। जिन्ना भी धन्नवाद कर सकीए उन्ना घट है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हेलो
1: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिले इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में ख़त्म हो गई। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले

0: जम्मू और कश्मीर पुलिस SDRF NDRF पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम की कोशिशों को सराहा। भारत और अमेरिका ने आज एक दोतरफा फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये अहम मुआहदा नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक दूसरे को सौंपा। वजीर खारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से मुतनव्वे सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलेगा, दोनों मुल्कों को माली मामलात से मुतालिक तआवुन में मदद मिलेगी और अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर के मौसर बंदोबस्त में भी मदद मिलेगी। तमिलनाडु में 3 असेंबली हलकों मदुरंतकम, पेरुंदुरई और धारापुरम को AIADMK से वाबस्ता 3 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद खाली हलके करार दे दिया गया है। ये सीटें इसलिए खाली हुई कि स्पीकर ने कल उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इससे पहले त्रिची मशरकी हलके को भी खाली करार दे दिया गया था क्योंकि वजीर आला जोसेफ विजय ने, जिन्होंने 2 हलकों से कामयाबी हासिल की थी, त्रिची मशरक से इस्तीफा दे दिया था। AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडाबड्डी के पलानीस्वामी ने इन 3 अरकान असेंबली के इस्तीफे को मंजूर करने के स्पीकर के फैसले की नुक्ताचीनी की है। भारत समेत दुनिया के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज़ के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ हज का रुकन आज़म अदा किया जा रहा है। ये आजमीन वहाँ तौबा और इस्तग़फ़ार में दिन गुजार रहे हैं। आजमीन हज मस्जिद नबरा में खुतबा हज सुनेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले जहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहाँ वो शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लू से कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि बहुत से मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री के दरमियान चल रहा है। जुनूब मगरबी मानसून के आज या कल केरलम पहुंचने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे की जानिब से मानसून की आमद के बारे में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे IPL के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वज़ारत खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तहकम महफूज और मजबूत तवानाई के मार्केट्स के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा किया। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गाँवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीज़ हज अदा कर रहे हैं और IPL क्वालिफायर 1 में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल। एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम तुहाडा सारयां दा। अपना की नाम फौजी वीराली। जी हाँ, फौजी वीराली ये प्रोग्राम ते प्रोग्राम दा सिलसिला एक बारी फिर शुरू करते हैं। और हुण जिहड़ा तुहानूं गीत सुनाण जा रहे हैं ना, उस गीत नूं तुसीं सुनिया तां बहुत बारी होना, गुनगुनाया भी बहुत बारी होना और उस गीत दे नाल तुहाडियां यादां भी बहुत जुड़ियां होणियां। और जदों भी ये गीत चलता है ना तो तुहाडे जिहड़े पैर ने वह जरूर थिरकदे होने। क्यों थिरकदे होने ने ये जदों तुसी गीत सुनोगे ना वो तुहानूं अपने आप ही पता चल जाएगा। मैं गीत चलाने जा रहा मुहम्मद रफ़ी का गाया होया और मुहम्मद रफ़ी दे नाल आशा भोंसले की जिहड़ी है जोड़ी है ना, इन्हां ने जदों जदों ऑन स्क्रीन किसी अपनी आवाज़ दिती है तो हमेशा ही वो गीत हिट होए ने। जिहड़ा गीत तुहानूं सुनाउण जा रहा उन्हें लिया गया तीसरी मंजिल फिल्म 1966 दे विच फिल्म आई सी और शमी कपूर दी लाजवाब एक्टिंग इस फिल्म दे विच। और गीत संगीत की गल करा तो राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की कलम, तो मुहम्मद रफ़ी ते

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटन्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी

0: ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
1: Will become even more important to the world.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action.
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित BSF मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना

0: बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से छह लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है।

0: जा सकता है। ध्यान रहे, ये कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत के मुताबिक बुलाया जाएगा।
1: थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम रंगली धरती दे विच। इस प्रोग्राम दे विच अज असी राजकुमार ते उन्हां दे साथियों वालों गाईयां गईयां माता दी भेंटा दा गुणगान नूं सुणांगे। ते आओ फिर शुरू करते हैं गुणगान इस भेंट दे नाल।

गोकुल दास पुत्र विजय कुमार के कोंडल ते आर के कोंडल। मसीता डब वाली तो दर्शन लोट सरगुन इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर हनी लोट। लो जी इन्हां सारियां दी फरमाइश ते तुहानूं सुनाउण जा रहे हां अमरिंदर गिल दी आवाज़ च ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत, पंजाबी फिल्म संगीत। तुहाडा दोस्त गौरव इस प्रोग्राम नूं पेश कर रहा है। अगला जिहड़ा गीत तुहाडे लई लैके आ रहे हां, उहनू लिया गया फिल्म कली जोटा दे विचों। 2023 दे विच आई है पंजाबी फिल्म, जिहदे विच इस गीत नूं गाया है सतिंदर सरताज ने। ना सिर्फ गाया है बल्कि लिखिया भी उन्होंने ही है, और संगीतबद्ध किया है राजू सिंह होरां ने। और इस गीत दे नाल उन्हां दा रुतबा जिहड़ा है पंजाबी इंडस्ट्री दे विच बहुत उपर हो गया, क्योंकि ये गीत ही रुतबे वाला है।

गाया है बी पराग होरा ने। जी हाँ, बी पराग का गीत है और फिल्म है कैरी ऑन जट्टा। इनू लिखा है जानी ने और कंपोज भी किया है जानी ने। तो फिर सुनिए बी पराग तक गाया एक ही।

जी बिल्कुल। जदों कोई दिल दे बहुत नेड़े हुंदा है ना, तां सारा जहान ही उहदे विच सिमट के रह जांदा है। जिदां आकाशवाणी ते उहदे स्रोते एक दूजे दे विच सिमटे होए ने और हमेशा ही एक दूजे दे नाल ने। तो फिर अगला ही गीत दी वारी आ गई है। हुण अगला गीत जिहड़ा है ना, वो एक अजिहा गीत जिन्हों तुसी प्यार नाल भी गुनगुनाया है और किसी की याद दे विच भी गुनगुनाया है। हुण तुसी सोच रहे हो कि किहड़े गीत की गल कर रहे हैं। एक गीत है एम्बर वशिष्ठ ते प्रियंका का गाया हुआ, फिल्म जट एंड जूलियट चो लिया गया है गीत। और इस गीत के पिछे एक कहानी है, जे मैं तुहानू दस दवां कि अंबर वशिष्ठ ने जदों यह गीत गाया सी ना, तां यह गीत एक डमी दे रूप दे विच गाया सी। इस तो पहला कोई उन्हां दा बहुता चर्चित गीत नहीं सी, वो गिटारिस्ट सी और जलंधर दे विच ही पढ़ते सन। तो जदों उन्हां नूं इहदे डमी लई बुलाया गया तां उन्होंने एक गीत गाया। तो दलजीत दोसांझ नूं उन्हां दा गाया गीत बहुत पसंद आया। वो कहिंदे इन्हां दी आवाज़ दे विच ही रहिण दिओ। और इन्हां दे नाल जिहड़े दूसरे सन प्रियंका

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच गुरु की महिमा बयान की गई है। पार ब्रह्म ते गुरु विच कोई भेद नहीं दस्या गया। सच्चा गुरु समर्थ हुंदा है। उस दे पास ऐसे गुर भाव ऐसे मंत्र हुंदे ने जो ओ पास बैठिया नू प्रदान करता है। उन्हां दे दुखां दी निवृत्ति वहमा परमा तो छुटकारा दिवा के उन्होंने सच्चा ज्ञान बख्शता है। पूरे वैद दी न्याई नाम रूपी औखद बिना किसी भेदभाव दे सबना नू प्रदान करता है। बस उस दी कृपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख परमेश्वर निरपाओ है, निरवैर है, जीवां दे भय दा खंडन करदा है, दुखां तों निवृत्ति प्रदान करदा है, भगत वच्छल बन के भगतां दी रख्या करदा है, निराकार है अकाल पुरख प्रभु। उसनू एक खिन भी चेते कीत्या कीते हुए करोड़ां अपराध माफ हो जांदे ने, मिट जांदे ने। ऐसे प्रभु नाल मन वडभागे प्राणियों का लगता है। फरमान है, भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकार है, कूट प्राद मिटे खिन पीतर, जा गुरमुख नाम समारे। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: पावखंडन दुख पंजन स्वामी पगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे किन पीतर जा गुरमुख नाम समारे। इस शब्द गायन कीता सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद पाव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वशल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन भीतर जा गुरमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दूतारे। रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहें दरबारे। सर्ब जियां के दाते स्वामी कर कृपा लेहो ओ बारे तेरा।

वर्ण न जापै रूप न लखियै त्रिकुदरत कौन बिचारे, जल थल महियल रव्या सर्ब थाई अगम रूप गिरतारे। कीरत करें सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज निर्माणता दी मूरत, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दा राग तनासरी अंदर उचारण कीता होया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 670 उपर सुभाए मान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी 31 रागां विच उचारण कीती गई है। 6 गुरु साहिबान, 15 भगत जन, 11 पट साहिबान अते 3 गुरसिखां दी बाणी दर्ज है। कुल 31 रागां विचों 19 रागां विच श्री गुरु नानक देव जी, 17 रागां विच श्री गुरु अमरदास जी, 30 रागां विच धन धन श्री गुरु रामदास जी, 30 रागां विच ही श्री गुरु अर्जन देव जी अते 15 रागां विच धन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बाणी उचारण कीती है। श्री गुरु अंगद देव जी ने केवल 63 श्लोक उचारण किए हैं जो वक् वक् वारा अंदर दर्ज हैं। ये पावन शब्द भी तनासरी राग अंदर उचारण किया होया है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर 10वां राग है। ये शब्द 4 पदियां वाला शब्द है। इस शब्द के सरलेख तो बाद मंगलाचरण भी उचारण किया होया है जिस अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी ने वार वार उस परमात्मा अगे नमस्कार की है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर 522 वार दर्ज है। इस दा भाव परमात्मा एक है जिस दे नाम अनेक हैं। राम अल्लाह वाहिगुरु ये सब एक परमेश्वर दे ही नाम हैं। एक तो संसार पैदा होया है, एक तो ही जीवन है अते उस एक तो ही नाश हुंदा है। उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन गुरप्रसाद गुरु कृपा है। इस पावन शब्द के केंद्रीय भाव अंदर सतगुरु जी ने धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी ने उचारण किया है कि हे दीना उत्ते दया करन वाले परमेश्वर जी, मेरा मन आप जी दे चरणा नाल लग गया है, भाव मैं आप जी दी बाणी नाल आप जी दे नाम नाल जुड़ गया हाँ। ये कृपा करो कि ये जो पंच दूत हैं भाव ये पंच विकार हैं ये मेरे वस विच हो जान, मैं इन्हां दी पटकना तो बढ़ जावां क्योंकि ये पंज ही हैं जो मैनू वार वार पटकाई फिरदे हैं। विचार अधीन शब्द दियां रुहाव दियां पंगतियां इस तरह हैं, मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूतारे रहाओ। सतगुरु जी फरमान कर रहे हैं कि हे प्यारे राम जी, वाहिगुरु जी, हे परमेश्वर जी, मेरा मन आप जी दे नाम विच लीन हो गया है, मैनू हुण इन्हां पंजां दूतां तो बचा लवो। इस प्रथाए श्री गुरु अर्जन देव जी टोडी राग विच भी उचारण करते हैं, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख आर अहं रोग ए तन ते सगल दूर कीन। शब्द दियां आरंभता दियां पंक्तियां हैं भाव खंडन दुख भंजन स्वामी, भगत वशल निरंकारे, कोट पराध मिटे खिन भीतर जा गुरमुख नाम समारे। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि हे जन्म मरण नूं कट्टन वाले पव जल पा दुनिया दे पव सागर तो पार करन वाले, दुखा नूं नाश करन वाले जगत दे जीवां दे मालक प्रभु जी, भगत वशल भाव भगतां दी रक्षा करन वाले निरंकार प्रभु जी जिस दा कोई आकार ही नहीं, ऐसा परमेश्वर जिस नूं भगतां ने वार वार पुकारिया है, ऐसे परमेश्वर दा नाम जो साढ़े करोड़ां ही पापां दा नाश करदा है, जिवें धन श्री गुरु रामदास जी गौड़ी राग विच उचारण करदे हन, हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बार बार हर गणत न आवै, तू गुणवंता हर हर दयाल,

0: हर आपे बख्श लहै हर भावै। हे मेरे दयाल प्रभु जी, साढ़े अवगुण बहुत बहुत हैं, असी वार वार गलतियां करते हाँ, वार वार अवगुण करते हाँ, वार वार पाप करते हाँ, जिन्हों की गिनती भी नहीं की जा सकती। पर ओ बख्शेंद प्रभु बहुत दयालु है, जो सानू बख्श दिंदा है। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि जेड़ा गुरमुख गुरु वाला हो के नाम जपदा है, सिमरन करता है, परमेश्वर जी उन्हां दा जन्म मरण मिटा देंदे हन, उन्हां दे दुख पाप आते अपराधा तो बख्श के चरनी ला लेंदे हन। विचार अधीन शब्द दे दूसरे पदे अंदर सतगुरु जी उचारण करते हैं, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भगत सोहें दरबारे, सर्ब जिया के दाते स्वामी, कर किरपा लिह उबारे। श्री गुरु अर्जन देव जी हुण परमात्मा दे घर की शोभा अते नाम जपण वालियां दी शोभा वड्याई करते हैं। हे परमेश्वर जी, जिवें तुहाडा टिकाणा है, वह स्थान वह जगह वह बहुत सुंदर है, वह अस्थान भी बहुत सुंदर है, तेरा रूप भी सोहना है, तेरे भगत जन भी तेरे दरबार विच बहुत शोभदे हन। जिवें बसंत राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी उचारण करते हैं, तेरिया भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा। उस प्रभु का स्थान उच्चा भी है, सोहना भी है, उस दी भगती करन वालियां तों भी बलिहार जाइए। विचार अधीन शब्द विच सतगुरु जी उचारण करते हैं, सारे जीवां दे मालक परमेश्वर जी, किरपा करके ऐसी मेहर करो कि सानू भी अपने चरणों विच रख लवो। शब्द दियां पंक्तियां हन, तेरा वर्ण न जापै रूप न लखीऐ, तेरी कुदरत कौन बिचारे, जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई, अगम रूप गिर तारे। इस पंक्ति अंदर सतगुरु जी गुरु अर्जन देव जी उचारण करते हैं कि उस परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है, कोई चक्कर चिन्ह भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा शरीर नहीं। जिसका शरीर है उसका फिर रूप रंग भी मनना पवेगा, जिसका रूप रंग है उसका फिर कोई देश भी है, उनकी कोई जात भी है, कोई वर्ण भी है, पर परमात्मा का कोई रूप रंग नहीं है। इसलिए उसकी कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं है। जिवें दसवें पातशाह जी जाप साहब जी की पवित्र बाणी दे पहले छंद अंदर परमात्मा की होंद नूं प्रगट करते हुए उचारण करते हैं, चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहिन जिहे, रूप रंग अर रेख पे को कह न सकत के। गुरु अर्जन देव जी महान बाणी सुखमणी साहब दे 16वीं अष्टपदी दे श्लोक अंदर बचन करते हैं, रूप न रेख न रंग किश त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। वह तिना गुणा तो वखरा है, पर वह परमेशर जल विच भी वास करता है, थल विच भी वास करता है, आकाश विच भी, पताल विच भी, भाव हर थां विच उसे दा ही वासा है, पर साडी पहुँच तो परे है। विचार अधीन शब्द दीयां अखीरलियां पंक्तियां हन, कीरत करें सगल जन तेरी, तू अविनाशी पुरख मुरारे, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण दुआरे। के हे मुरारी प्रभु जी, भाव दैंता दा भी मूँह मोड़ देन वाले परमेश्वर जी, सारे भगत जन तेरे सेवक जन तेरी ही कीर्ति करते हैं, तैनू ही आराधते हैं। हे परमेश्वर वाहिगुरु जी, साढ़े ते भी कृपा करो कि असी आप जी की शरण विच आए हाँ, सानू भी अपनी चरनी ला लवो, जिमें तुहानू पौंदा है उस तरह रख लवो।
1: भव खंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारी। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी कुलदीप सिंह। अकाल पुरख परमात्मा जुगां जुगांतरां तो ही भगतां दी पैज रखदा आया है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाखस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लय छुड़ाया। गुरबाणी

भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया राम। इस शब्द का गायन कीता सी भाई दिलबाग सिंह, भाई गुलबाग सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਕਸੌਲੀ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मूज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरुआत की बीजू जनता दल के पूर्व

0: राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 6:05 हो चुके ने। आओ हुण जानदे आं अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा, जिस विच होणगीआं कम दीआं गल्लां। सारा साल हरा चारा, इस बारे जानकारी देणगे डॉक्टर मनप्रीत जैतका। गर्मियां दा सेहत ते असर, इस बारे दसनगे डॉक्टर गगन। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। इस तो अलावा तुहाडे मनोरंजन लई गीत संगीत भी होएगा। शाम 7:40 ते अंग्रेजी वार्ता पेश कीती जाएगी, स्क्रीन वायलेंस रियल इंपैक्ट। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नम्रता जोशी। रात 8 बजे प्रोग्राम पेश करेंगे जिंदगी हसीन है। रात 9:15 आएगा प्रोग्राम स्पॉटलाइट साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम खेड संसार। आज दे इस प्रोग्राम दे विच बॉक्सिंग एथलीट कृषा वर्मा नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होएगा सुर साधना। आज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुनोगे डॉक्टर राय बहादुर सिंह दा गाया राग पूरिया। रात 10:30 हिंदी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम होएगा सरगम। सो ऐसी अज रात तक दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। इस तो अलावा हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी समाचार अपने अपने समय ते प्रसारित कीते जाणगे। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र। हुण पेश है देशभक्ति समूह गाना।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौंक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 दिहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: की नौकरी लग गई।
1: ओए वाह, बधाइयां। हुन बहुत सारी शॉपिंग।
0: हाँ, नवा मोबाइल, जीन्स, जैकेट।
1: खैर जा शहजादे, तनखा तो पहला खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहला बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। पर पार्टी देन तो नहीं बचेगा तू।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तो हड़ा।
1: अच्छा,
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: हेलो,
5: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
6: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
7: ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनो एक होर देशभक्ति समूह गाना।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया देश पराया। हाँ जी बाल साहब, देखो हरा चारा आप सारे देखते हैं कि जिमीदारा जिहड़ा है बिना हरा चारा यह औखा काम है, क्योंकि जिमीदारे दे विच जे तुहाडे कोल अपना कोई डंगर बच्चे ही नहीं है तो फिर कहदा जिमीदारा।
1: सही गल
0: है कि नहीं? क्योंकि मुढ़ कदीमी साडा, चाहे आपां खेती मशीनरी जिन्नी मर्जी आ गई है पर हाली भी पशुआं दा जिहड़ा किता धंधा है लवेरे पालण दा, ये साडे लई इक बहुत वड्डी धिर है। अज जो कि फसलों का देखते आप नुकसान हो जाता है तो यही चीज़ आके मूहरे खड़ती है।
1: सही गल है
0: ना, सानू बचाते हैं माड़े वक्त तो।
1: बिल्कुल।

0: हाँ जी बाल साहब, देखो मौसम जिदा आप सारे जानने कि मौसम का अपना रंग है, अपना ढंग है।
1: जी
0: आप मौसम के लिहाज न चलना है, मौसम ने साडे लिहाज न नहीं चलना।
1: बिल्कुल दुरुस्त गल है जी,
0: और मौसम किसी का लिहाज नहीं करता,
1: नहीं करता जी।
0: चाहे तुम जिन्ने मर्जी अपने आप को ताकतवर बहुत खब्बी खान तुरे फिरो,
1: जी
0: पर जो मौसम की लफड़ा पैंदा है ना, उन्हें नहीं देखना फिर।
1: सही गल
0: तो इस करके मौसम के नाल किसी तरह की जिदा कहने हाँ छेड़छाड़ है ना,
1: जी,
0: या ये नाल कोई ऐसी खेड करनी, वह गलत हो जाती
1: सही
0: है,
1: गल
0: ताकि
1: जी,
0: सेहत पर माड़ा असर पाँदी है।
1: बिल्कुल जी,
0: गर्मियों का साड़ी सेहत पर की असर है, किदा आप बचा करना है, इस विषय के बाबत डॉक्टर गगन होर असम साहब ने गल्लां बातें साझियां कीतियां, आप साझियां करते हैं।
1: सुना दियो जी।
2: गलबात करांगे डॉक्टर गगन ठाकुर जी नाल, जिहड़े कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर दे विच प्रोफेसर ने, और खास करके जो साडा विशा डॉक्टर साहब आपां गलबात करन जा रहे जिस ते कि गर्मियां दा मौसम है, गर्मी लगन दे की प्रभाव पैंदे साडे शरीर ते, या लू लग जांदी हैगी है, की कारण हुंदे ने, किस तरीके नाल बचा कर सकते हैं, की सावधानी रखिए, और इस मौसम में आपां नूं किस तरीके दे नाल जिहड़ा चाल चलन साडा होना चाहिए है। थोड़ी जी गल आपां डॉक्टर साहब ये करते हैं पहला कि आयुर्वेद के हिसाब नाल गर्मी का मौसम जिहड़ा है वह कदों तो मन्निया जांदा है।
1: सब तो पहला सारे श्रोताओं नूं मेरा प्यार भरा सति श्री अकाल। आयुर्वेद विच सारे साल नूं असी छे रुत्तां विच वंड दित्ते हैं। पहला सीजन जनवरी विच जदों स्टार्ट हुंदा उहनूं असी कहिंदे शिशिर, उहदे बाद आउंदी है बसंत रितु, ते उहदे बाद आउंदी है ग्रीष्म जिहनूं आपां गर्मी कहिंदे हां। ते इह जिहड़ा सीजन, जिहड़ा छे सीजन डिवाइड किए गए, इह दो दो महीने दे हुंदे हैं। ते जदों गर्मी दा नंबर आउंदा और तीजे सीरीज़ ते आंदा, तीजे साडा वर्ग विच आंदा, ते वो स्टार्ट होंदी है 15 मई तो लेकर 15 जुलाई तक रहिंदी है। मतलब जे जिहड़ा 2 महीने दा टाइम है 15 मई तो लेकर 15 जुलाई तक, ये गर्मी दी रुत्त दा टाइम है, असली गर्मी दी रुत्त यही होंदी है।
2: ठीक है जी।
1: ते इहदे 5-7 दिन पहला ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देंदी है।
2: ते कई बार सानूं लगदा कि हर बार ही गर्मी वध रही हैगी है, वातावरण दे विच उहदे कई कारण हैगे है कि डॉक्टर साहब कि आपां जो मानते हैं कि कई प्रबंध असीं कीते हुए है घरां च भी बाहर भी, पर साडे शरीर नूं भी गर्मी चाहीदी है।
1: बिल्कुल, देखो साडी जिहड़ी, क्योंकि साडा देश इहो जिहा देश है जिथे आपां सारी रितुआं देख सकते हैं, जिथे पूरी ठंड पैंदी है, सर्दी रहिंदी है पूरे साल विच, उहनां दा जिहड़ा शरीर है वह वक्रे तरीके नाल उहनूं नूं बीमारियां दे जांदा। साडे शरीर विच की हुंदा, जदों साडे शरीर विच जदों असीं ठंड दा ही सारे साल फेस करते हैं, उहनूं सहदे रहिंदे, की हुंदा सारा शरीर दा बॉडी चेंज हो जांदा। ते आपा अपने आप नूं बड़ा लक्की समझिए कि आपा इस देश विच पैदा हुए हैं जिथे गर्मी भी आती है ते सर्दी भी आती है। गर्मियों नाल की हुंदा है, गर्मियां साड़ा शरीर दा जिहड़ा पसीना है वह शरीर दा पसीना बाहर निकलता है। जे आपा कंपेयर करिए उस कंट्री दे नाल, उस देश दे नाल जिथे ठंड पैंदी है ज़्यादा, गर्मी रुत दी रुत आती नहीं है, उन्हां नूं पसीने का कोई पता नहीं हुंदा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। हुण तुसी समात फरमाओ जगजीत सिंह की आवाज़ च एक गज़ल।

जी हाँ, जिंदगी हसीन है। जेकर जिंदगी दे नाल नाल चलते रहांगे तां जिंदगी हसीन लगेगी, जिंदगी खूबसूरत लगेगी। ते जेकर किते असीं रुक गए, जिंदगी अगे निकल गई, तां फिर तां जिंदगी अजाब बन जाती है। फिर जिंदगी तो बुरी होर कोई चीज़ नहीं। इसलिए जेकर इसनूं हसीन बनाना है तां इस दे नाल नाल चलना पएगा, रुकना नहीं है, चलते चले जाना है। ते आओ जी, चलते हैं इस खूबसूरत गीत वल। फिल्म सोनी मईवाल तो आओ सुनते हैं।

जी हाँ, सोनी मेरी सोनी सोनी, होर नहीं कोई होनी सोनी। रब से ज़्यादा तेरा नाम लेता हूँ, रब मुझे माफ़ करे। कहने दा मतलब कि जदों इंसान नू इश्क हुंदा है या मोहब्बत हो जाती है तो इक्को ही इंसान उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। उसके आसे पासे ही उस दियां सारियां खुशियां सिमट के रह जांदियां ने। तां फिर वक्त बदलता है इंसान का, जदों परिवार बनता है तो फिर जिहड़े बच्चे हुंदे ने उहनां दे आसे पासे सारी खुशियां सिमट जांदियां ने, उहनां दे आसे पासे ही सारी दुनिया सिमट जांदी है। यानी कि इंसान अपनी खुशी दे लई दूसरियां दे उत्ते हमेशा डिपेंडेंट रहिंदा है कि बई इह खुश होणगे, इह मेरे बारे चंगा सोचणगे, या मतलब इहनां नूं मैं हसदे खेडदे देखांगा तां मैं खुश होवांगा। अदरवाइज़ इंसान अपनी खुशी वल बहुत घट नज़र मारदा है कि उहनूं किस चीज़

आसे पासे ही सारी दुनिया से मिट जाती है। यानी कि इंसान अपनी खुशी दे लई दूसरों के उत्ते हमेशा डिपेंडेंट रहिंदा है कि बई ए खुश होणगे, ए मेरे बारे चंगा सोचणगे, या मतलब इन्हां नूं मैं हसदे खेडते देखांगा तां मैं खुश होवांगा। अदरवाइज़ इंसान अपनी खुशी वल बहुत घट नज़र मारदा है कि उहनूं किस चीज़ 'च खुशी मिलदी है। साडे कोल टाइम ही नहीं हुंदा अपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे सोचण दा, कदी ध्यान ही नहीं दिंदे असी। कहिंदे कि जदों साडी परवरिश भी ना इदां ही हुंदी है कि बई दूसरियां दी नज़रां दे विच हमेशा चंगे बन के रहना, जदों छोटे हुंदे ने ते माँ बाप इही सिक्ख्या दिंदे ने कि बच्चे कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुहाडे उत्ते कोई उंगली चुके, कोई इह ना कहे कि इन्ने इन्ना माड़ा काम कीता या इन्ने बुरा काम कीता है, तां हमेशा मतलब अच्छे बन के रहना है समाज दे विच दुनिया दे विच। तां इंसान उदां दा ही हौली हौली हौली हौली बनदा चला गया कि दूसरियां नूं जिस चीज़ दे विच खुशी मिलदी है ओही काम करने शुरू कर दित्ते। दूसरे जिस चीज़ 'च खुश होणगे कई वारी अपनियां खुशियां सैक्रीफाइस कर दिंदे हां आपां, अपनियां खुशियां नूं दबा दिंदे हां कि कोई गल नहीं ओह खुश है ना तां मैं खुश हाँ। तो इस तरह जदों जिंदगी चलदी जाती है ना, जदों असीं सिर्फ और सिर्फ दूजियां दे लई जिंदगी जीना शुरू कर दिंदे हां और अपने आप नूं भुलदे चले जाने हां, अपनी खुशी नूं दरकिनार कर दिंदे हां, फिर एक टाइम ऐसा आंदा है कि मन जड़ा है ना हौली हौली वो शांति अपनी खोनी शुरू कर देता है। मन दे विचों शांति जानी शुरू हो जाती है, बेचैनी आ जाती है। ताही तो आप देख रहे हैं कि माहौल कितना ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो गया। इंसान जदों कल्ला हो जाता, जदों उहदे आस पास जिन्हां दे वास्ते उसने अपनी सारी दुनिया मतलब जिन्हां नूं वो समझदा सीगा, जदों वो थोड़े जे इधर उधर हो जाते हैं चले जाते हैं अपने फैमिली दे विच बिजी हो जाते हैं, फिर इंसान नूं कल्ला अपन जड़ा हुंदा ना वो बहुत ज़्यादा खांदा है, अंदरों बहुत ज़्यादा तकलीफ दिंदा है, फिर इंसान जड़ा है वो डिप्रेशन दे विच आ जाता है। तो सियाने कहंदे ने कि जरूर है ठीक है असी समाज दे विच रहने हां, दुनिया दे विच रहने हां, असी दूजियां दी खुशी भी देखनी है, लेकिन अपने आप नूं नहीं भुल जाना। क्योंकि जदों असी अपने आप नूं भुल जाने हां ना तां फिर साडी मन दी शांति एक दिन जदों खत्म हुंदी है फिर इंसान डावाडोल हो जाता है, और उस टाइम जड़ा है तुहानू बाहर दी कोई खुशी फिर तुहानू खुशी दे नहीं पाएगी, फिर तुसी ये चाह के भी दूजियां नूं भी खुशी नहीं दे पाओगे क्योंकि तुसी अंदरों ही परेशान हो, अंदरों ही तंग हो, तो फिर दूजियां नूं असी किद्दां खुशी दे पावांगे। तो इसलिए अपने लिए कहिंदे कि जरूर टाइम कढ़ो, अपने आप दे नाल गल करो, तुहानू जिस चीज़ दे विच खुशी मिलती है पहले अपने आप नूं खुश करो, फिर तुसी दूजियां नूं डबल खुशी दे सकदे हो। तो अपने आप नूं भुलना नहीं है, क्योंकि जेकर तुसी ठीक हो खुश हो तो फिर सारे मतलब खुश हो सकते ने, तुसी उन्हां नूं खुशी वंड सकते हो। लेकिन असी की करते हैं कि जिंदगी बस जींदे चले जाने हाँ लेकिन खुशी वल ध्यान नहीं दिंदे, तो फिर जिंदगी की जदों अजाब बनती है ना तो फिर उदों इह वालियां लाइनां जहन दे विच आंदियां ने कि जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो अपना हिस्सा जरूर बचा के रखो, असी अपने खुशियां भी वंडनिया ने, असी अपना वक्त भी वंडना है, असी अपना प्यार भी वंडना है, लेकिन सारा वंड के खाली नहीं हो जाना, अपने लिए भी जरूर थोड़ा जा बचा के रखिए। मैं भी थोड़े नाल ही शामिल हाँ कि कभी सोचा ही नहीं कि अपने लिए भी कुछ टाइम कढ़ना या अपने खुशी वाल भी ज़रा ध्यान देना। तो कोशिश करिए कि जेकर असी खुश होवांगे ना तां ही असी खुशियां वंड सकते हैं। तो आओ जी किशोर कुमार दा गीत है, वह भी सानू कुछ इदां दी ही सिक्ख्या दे रहा, आओ फिर सुनते हैं।

तुम जो चाहो नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले। तुम जो चाहो नजारा अभी बदले, चांद बदले सितारा अभी बदले। पहले

पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना।

0: तो सुन रहे सी प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले रात के 8:45 हो जा रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों बाद सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 प्रोग्राम स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580

0: रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्या के परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसंख्या के परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन

0: सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympics.

0: कि मैं हर मुकाबले च मैडल लेना ही लेना। सो ये दसो कि पहला तुहाडा अंतरराष्ट्री पद्धर का जिहड़ा टूर सी वह किहड़ा सी और उहदे च प्रदर्शन किदां दा रहा सी?
1: मेरा एशियन जूनियर चैंपियनशिप सी, फर्स्ट इंटरनेशनल, और उत्थे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया सी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, मेरी फाइट उज़्बेकिस्तान दे नाल सीगी जो पिछले 3 सालों तो चैंपियन सीगी।
0: अच्छा।
1: एशियन चैंपियन दे विच सब जूनियर तो लेके जूनियर तक वो चैंपियन सीगी, गोल्ड मेडलिस्ट।
0: अच्छा।
1: और मैंने बहुत अच्छी फाइट जीती, 3-2 दे विच फाइट सी साड़ी। एक्चुअली थोड़ा फेवरिज्म भी हुंदा है अजकल स्पोर्ट्स दे विच, थोनू पता ही है। तो क्लोज फाइट दे विच एदा देखा जाता है कि पहला तो कि दे अच्छे परफॉर्मेंस ने, नाम किसदा है।
0: अच्छा।
1: इस करके उस दे फेवर चो फाइट चली गई सी।
0: अच्छा अच्छा, वो एक्सपीरियंस तुहानू किदां दा लगा? अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते तुसी ये मुकाबला लड़ रहे सी, उज़्बेकिस्तान जिहदा नाम बहुत है बॉक्सिंग च, उहदे खिलाफ फाइट लड़के किन्ना कॉन्फिडेंस मिलिया तुहानू?
1: कॉन्फिडेंस बहुत मिलिया क्योंकि मैंने अच्छी फाइट दी थी अच्छी बॉक्सर दे नाल, ता बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सीगा उहदे नाल खेडण
0: जी। अच्छा, तुसीं जदों भारत दी प्रतिनिधता करदे हो तुहाडे नाल जिहड़ी टीम हुंदी है कोचेस दी उह वी बहुत वधिया हुंदी है।
1: हाँ जी।
0: और इस तो पहला तुसी पंजाब दी प्रतिनिधता कीती सी, सो इस अंतरराष्ट्रीय टूर ते जिहड़े कोच तुहाडे नाल गए, तुहानू माहौल च किन्ना क फर्क लगा और किन्ना क तुसी अपने आप नू बैटर महसूस कीता?
1: कोचिज का बिहेवियर बच्चों नाल बहुत ज़्यादा अच्छा हुंदा है ना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने मोटिवेट करना है इंडिया ले मेडल लेके आना, तो वो अपना 100% देंदे ने बच्चे नू, ते बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं और बहुत अच्छा माहौल हुंदा है।
0: अच्छा, उत्थों आ के फिर उस तो बाद अगला टारगेट शायद तुहाडा अंडर 19 का होएगा, भी इहदे च मैं अपनी थां बनानी है, अपना मुकाम बनाना है। सो उस तो बाद अंडर 19 के मुकाबले किहड़े किहड़े सी जिहदे च तुसीं भाग लिया?
1: फस्ट मैं नैशनल खेली सी, यूथ नैशनल, उत्थे मेरा सिल्वर मैडल सी। फिर मैं खेलो इंडिया गेम्स खेली, खेलो इंडिया यूथ गेम्स च मेरा गोल्ड मैडल सी। दैन उस तो बाद ट्रायल्स सीगे वर्ल्ड चैंपियनशिप ते।
0: अच्छा।
1: और उस तो पहला मेरा एक कॉम्पीटिशन सीगा, मैं कॉम्पीटिशन छड़ के ट्रायल्स की तैयारी की, मतलब।
0: अच्छा।
1: 15 दिन की वो मिली सी कि 15 दिन बाद थोड़े ट्रायल्स होने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं कॉम्पीटिशन छड़ता, नैशनल लेवल कॉम्पीटिशन सी।
0: अच्छा।
1: फिर मैंने ट्रायल्स की तैयारी की, तो फुल मैंने 15 दिन 3 टाइम ट्रेनिंग की, सुबह शाम दोपहर में।
0: अच्छा।
1: उस तो बाद जब मैं ट्रायल्स ले गई, जिस तो मैं फर्स्ट नेशनल हारी सी, मैंने उस कुड़ी नू ही फाइनल्स हराया दोबारा।
0: अच्छा, क्या बात। हाँ
1: जी, तब मैनू बहुत ज्यादा अच्छा फील होया कि प्रोग्रेस हुई है मेरे विच।
0: जी जी, अगे नालों इंप्रूवमेंट हुई, बेहतर हुई तुसी अगे।
1: हाँ जी।
0: वो जड़ी ट्रेनिंग कीती हो केड़े कोच साहब ने कराई और किस तरह की ट्रेनिंग सी जिन्ने तुहाडी परफॉर्मेंस इन्ना फर्क पा दिता?
1: हरियाणा तो कोच है सनी गहलावत, मैं एनसीओ।
0: अच्छा।
1: औरंगाबाद ट्रेनिंग कर दिया, तो उत्थे साइंस कोच है।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कराई, उन्होंने मेरी गेम च बहुत ज़्यादा चेंजेस किए है ना, उन्होंने दसिया कि किस ओपोनेंट नाल किद्दां खेलना किवें, तो उन्हें करके ही मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स नू क्वालीफाई कर पाई
0: जी। उस तो बाद फिर जी वर्ल्ड चैंपियनशिप सी कित्थे हुई और उत्थे किद्दां दा तुहाडा तजर्बा रहा?
1: कोलोराडो US दे विच हुई सी ये।
0: अच्छा।
1: ते बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस सी गा ये।
0: अच्छा।
1: एक्चुअली US दे विच बहुत ज़्यादा ठंड सी नवंबर दे टाइम च, माइनस टेंपरेचर सी, एंड असी फर्स्ट डे जो उत्थे पहुंचे तो मैंने उत्थे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, तो उस बाद मैंने फीवर हो गया, फीवर उतर ही नहीं रहा।
0: अच्छा।
1: मैं हर 6 घंटे बाद डोलो खा रही, एंड 2 दिन बाद मेरी फाइट सी। मैं सारे नु उम्मीद ही नहीं सी कि मैं फाइट खेल पाऊंगी, बहुत ज़्यादा बीमार सी। दैन फिर मैंने मैम नु बोला कि नहीं मैम, मैं आई तो मैं खेलूंगी अपने लिए नहीं, बट मैं इंडिया लिए तो खेलना ही खेलना है।
0: ओके।
1: देन मैं खेली और मैं वो फाइट जीत गई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी। फिर उस तो बाद मेरे फाइनल सीगे विच 2 दिन का गैप सी।
0: अच्छा।
1: फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही सी, मैं कुछ नहीं खाया 7 दिन तो।
0: अच्छा, ये दसो कि बीमार होने के बावजूद तुसी वो बाउट लड़ी, केड़ी मुल्क की लड़की सी जिदे नाल बाउट लड़ी और तुसी किदा अपने आप नू महसूस कर रहे सी, किन्नी कमजोरी महसूस कर रहे सी?
1: न्यूजीलैंड की लड़की सी, बहुत टफ फाइट सी।
0: अच्छा।
1: एक्चुअली मैनू लग्या नहीं सी कि इन्नी टफ फाइट होगी, बट बहुत टफ फाइट सी, ते बट फिर भी मैं बहुत अच्छा खेली, थोड़ा होर अच्छा कर सकती सी, बट बीमार होने की वजह तो थोड़ी वीकनेस करके नहीं खेल पाई सी, बट दैन फाइट जीत गई सी।
0: अच्छा, 2 दिन का रेस्ट सी, उहदे च कुछ रिकवरी हुई सी फिर कि नहीं?
1: नहीं बिल्कुल, मतलब फीवर उतर ही नहीं रहा सी, बहुत ज़्यादा ऐदा हो गया सी, और कुछ बॉडी च जा नहीं रहा सी, वॉमिट आ रहे सी, चक्कर खा के गिर रही सी, होल
0: ऐदा
1: बहुत ज़्यादा वीक हो गई सी। बट फिर फाइनल सी मेरी जर्मनी दे नाल, वो मेरी मतलब पूरी जर्नी दी बेस्ट फाइट सी।
0: अच्छा।
1: ते मैं 5-0 दे नाल उन्हें डिफीट किया। फाइनल्स वाले दिन 5 फाइट सी इंडिया दे, और मेरी लास्ट फाइट सी, मेरे तो पहला सारे फाइट लूज कर गए सीगे, एक भी मेडल नहीं सीगा गोल्ड।
0: अच्छा।
1: सिल्वर सी।
0: अच्छा।
1: देन जेडे साडे नाल मैम सी, वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए सीगे, वो बोले कि देख कृषा तू जो करना है वो करिए, असी नहीं तेनू दस।

0: तू जिद्दा खेलना तू अपने नाल खेली, बट मैनू बस तू जितनी चाहिए और कुछ नहीं।
1: अच्छा।
0: मैं बोले कोई बात नहीं, मैं टेंशन ना लो।
1: हाँ।
0: भी मैं जीतूंगी ही
1: जी।
0: देन मैं जाके जो दो स्टार्ट किया है ना, मैं अटैक स्टार्ट किए, वो बहुत क्लियर पंचेस लग रहे थे, नो डाउट वो भी बहुत अच्छी प्लेयर सी।
1: वो केड़ी मुल्क दी बॉक्सर?
0: जर्मनी
1: दी। जर्मन दी। अच्छा।
0: ते फर्स्ट राउंड मेरे फेवर च आ गया, दैन मैम नू थोड़ा होया कि हाँ अच्छा कर रही है, फिर मैम मैनू होर दस रहे सीगे कि इदा इदा मार। सेकंड राउंड 5-0, थर्ड राउंड च उहदे काउंट हो गया, मतलब
1: अच्छा।
0: जिवें हार्ड पंच लगदा है
1: तां
0: 8 काउंट दिंदे ने सेकंड लई कि तुसीं खेल पाओगे या नहीं, तां उसदे वो काउंट भी हो गया, ते दैन फिर मैं फाइट जीत गई सीगी।
1: वाह। सो ये दसो कि इस फाइट नू जितने तो बाद जदों के सारियां बाकी लड़कियां हार गईयां सी, तुहाडे खेमे च फिर माहौल किदां दा सी इस जित तो बाद?
0: सारे शौक सीगे, पहली गल कि एडी बीमार होने के बावजूद भी फस्ट गोल्ड मेरा आया, एंड इंडिया च तो पूरा रोला पै गया सीगा, मतलब बॉक्सिंग दा, बॉक्सिंग दी उस च।
1: अच्छा।
0: कि मेरा फस्ट मेडल आ गया, फैमिली बहुत ज़्यादा खुश सीगी, कोचिस बहुत खुश सीगे उत्थे, मतलब बहुत अच्छा माहौल हो गया सीगा।
1: कृषा, जदों इदा दी सानू प्राप्ति होवे उस तो बाद साडा हौसला होर वधदा है और सानू आस होण लगदी है कि असी अगे सीनियर बॉक्सिंग च या होर जिहड़े मुकाबले होणगे उन्हां च वी सफलता प्राप्त करांगे। उस तो बाद तुहाडी तैयारी किस तरह की रही और किहड़े मुकाबले रहे अगे?
0: उस तो बाद जिदा मैं सीनियर होगी, एक्चुअली सीनियर दे विच बहुत कॉम्पीटिशन हुंदा है, ता बहुत टाइम लगता है अगे आने लई, बट फिर मैं नैशनल च पार्टीसिपेट किया। मेरी फर्स्ट फाइट लवलीना दीदी नाल सी।
1: अच्छा।
0: जो कि ओलंपियंस हैं, है ना।
1: अच्छा।
0: ते ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वो। मैं उन्हां नाल फाइट कीती, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन्हां नाल, वो मेरे तो हाइट्स भी काफ़ी लंबे ने, तो उन्होंने मैनू बहुत फ्रेंडली ट्रीट करके फाइट करवाई। मतलब कुछ कई होंगे ने एग्रेशन चाके मार देने छोटा है या हूने सीनियर है, बट उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सीगा। मैं फाइट लॉस कर गई सी बट अच्छा सी। देन दोबारा सीनियर नेशनल हुई, उत्थे भी मेरी दीदी नाल फर्स्ट फाइट आ गई।
1: अच्छा।
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: ते उत्थे मैं पिछली फाइट नालों बहुत बेटर फाइट कीती।
1: अच्छा।
0: वो भी उन्होंने भी मैनू आके बोलिया कि गुड परफॉर्मेंस।
1: हाँ।
0: कि बहुत चेंजेस आए ने।
1: कृषा, तुसीं जूनियर पहला लड़े उदे च अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर सीनियर च तुहाडी एंट्री हुई। जूनियर और सीनियर दा एक बहुत ज़्यादा गैप हुंदा है, जिदा तुसीं दस्या कि लवलीना होरां दे नाल तुहाडी फाइट हुई, फिर तुहानू की महसूस होया कि किदां दी मेहनत और किन्नी होर मेहनत की जरूरत है ताकि सीनियर्स च तुसीं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मुकाबला वधिया कर सको?
0: बहुत ज़्यादा मेहनत की लोड़ है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस होंगे इदा है कि यू जूनियर दे विच इन्ने स्किल्स का मैटर नहीं करते, बट सीनियर च मेन होंगे स्किल ते टेक्निक्स ते वर्क करना, भी किदा पंच मारना है, अगर आ रहा है किवें डिफेंस करके केड़ा काउंटर लेना है, तो इस दे लई बहुत ज़्यादा तैयारी की लोड़ है हले, जो कि चल रही है
1: जी। हाँ जी। अच्छा, तो अजकल तुसीं जिहड़ी प्रैक्टिस है वो कित्थे करदे हो और कोचिंग तुहानू किस तरीके दी मिलदी है ताकि तुसीं उस पद्धर तक पहुंच सको?
0: मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया छत्रपति संभाजी नगर।
1: अच्छा।
0: महाराष्ट्र उत्थे कर रही हूँ और बहुत अच्छी कोचिंग है उत्थे, बहुत अच्छे कोचिज ने, सारे NIA सर्टिफाइड कोचिज ने
1: जी। इहदे च डाइट जिहड़ी है वो बहुत वड्डा रोल प्ले करदी है।
0: हाँ जी।
1: सो खुराक दा तुसीं किस तरीके दे नाल ख्याल रखते हो, की खुराक च लैंदे हो तां कि स्ट्रेंथ दिन ब दिन वधदी रहे तुहाडी?
0: मेन प्रोटीन इनटेक होंगे, मतलब हूँ इदा कि स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो नॉनवेज भी खाना ही पड़ेगा, एंड प्रोटीन्स लेने पैंदे ने, सारा मतलब फॉलो करना पैंदा डाइट प्लान, एनर्जी ले, कार्ब्स ले की करना है, प्री वर्कआउट मील्स की खाना है, प्रॉपर एक न्यूट्रिशंस होंगे ने साइन दे विच जो कि सानू डाइट प्लान देंदे ने, फिर असी उदा ही फॉलो करना होंगे, और वेट मैनेजमेंट का तो बहुत बड़ा रोल होंगे इस दे विच।
1: अच्छा।
0: कि वेट अगर 100 ग्राम भी उपर होया तो असी वेट आउट हो जाने, तो सानू वेट मेनटेन करना बहुत जरूरी हो जाता
1: है। सो इधरी डाइट ते जेहड़ी तुहाडी कॉन्सेंट्रेशन है वो इहदा ध्यान है वो बहुत ज़्यादा तुहानू रखना पैंदा होगा?
0: हाँ जी।
1: ज़्यादा मिठा ना खा लीए, ज़्यादा फैट वाला कम ना खा लीए?
0: हाँ जी। मेन कॉम्पीटिशन टाइम तो होंगे ज़्यादा, बट ऑफ सीजन दे विच फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है
1: जी। हाँ जी। अच्छा, बॉक्सिंग च ना साडा फुटवर्क चंगा होना, साडियां टंगां च जान होनी ये बहुत जरूरी है।
0: हाँ।
1: सो इहदे लई खास तौर ते किदां दी तुसीं प्रैक्टिस करदे हो, किदां दी ट्रेनिंग करदे हो?
0: फुटवर्कस लई साढ़े सैशनस लगते हैं, स्पीड फुटवर्क, स्लो फुटवर्क, काफ़ी ज़्यादा पैरा जो धुएं निकलन लग जाते हैं, मतलब इन्ने ज़्यादा फुटवर्क दे सैशन दे, दैन रनिंग कराते हैं।
1: अच्छा।
0: रिएक्शन ट्रेनिंग कराते हैं फुट्स की, कि वो स्पीड वधे, रिएक्शन आवे, फुटवर्क चलन, फिर असी उही फाइट दे विच करते हैं तो इंप्लाय कि हो इदा कर पाइए, दैन फिर कॉम्पीटिशन होंगे
1: जी। हर बॉक्सर जो हों कृषा वह एक अपना स्टाइल हों, एक वो अपनी टेक्

0: सरगम दा अगला नगमा फिल्म गोरा और काला तो आवाज़ा मुकेश ते लता मंगेशकर दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दी।
1: धीरे धीरे बोल ओ

0: प्रोग्राम सरगम च अगला गीत पेश है फिल्म तीसरी मंजिल तो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी दी गीत दे बोल मजरूह सुल्तानपुरी दे दे संगीत आर डी बर्मन दा
1: देख रही हैं कोई खास बात है पीछे
2: पीछे आप हैं खास बात नहीं
1: यूं ही देखती रही आप तो यूं ही चलते रहेंगे हम पीछे पीछे
2: यूं ही चलते रहे हम तो रास्ता कौन देखेगा
1: रास्ता देखने वाला जो है पीछे पीछे
2: और अगर ठोकर लग गई तो गिरेगा कौन
1: गिरने की बात कैसी थामने वाला भी तो है पीछे पीछे
2: अच्छा अब आइए साथ साथ चलें
1: जी नहीं हमारी यही जगह है पीछे पीछे
2: पीछे पीछे पीछे पीछे दीवाने तो नहीं हो गए आप
3: दीवाना मुझसे नहीं

0: प्रोग्राम सरगम दा आखरी नगमा फिल्म इश्क पर जोर नहीं तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफ़ी दियाँ, गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा।
1: मैं जाऊँ?
2: अपने दिल से पूछो।
1: दिल?

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवास और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम

0: से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु

0: तेनू लख दे इक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पहुंचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई तेनू लख दे इक सुनाना ते तेनू नी तेनू।

0: बिल्कुल जी, बाबा वे कलाम रोड की तो जगह से के मोहन, और माफ करना जगमोहन कौर जी दी के दीप जी की आवाज़ से बेचते प्रोग्राम चल रहे जी सुगात। तो मैं थोड़ा दोस्त इस वे तरुण थोड़े नाल बने हुए तो एक और दोस्त भी आ गए हैं जी। लगभग साढ़े को हाले अधा घंटा जोड़ा है प्रोग्राम का है, जेकर तो कॉल नहीं लगी तो तुम डायल कर सकते हो 0182341 71, यानी कि 0182342171। सो यह नंबर डायल करके दोस्त भी पहुँच चुके हैं जी, आप देखते हैं कौन आए ने। हेलो नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात विच। बहुत शुक्रिया जी, कौन गल कर रहे हो ते कित्थों गल कर रहे हो? हाँ जी बिट्टू जी, की हाल चाल ने थोड़े? जी साढ़े बहुत वधिया ने, ते होर सुनाओ किदां चल रही जिंदगी?
1: बस वधिया चल रही है जी, बस।
0: चलो वधिया जी, चलनी चाहिए है बेसिकली। ते केड़े गीत दी फरमाइश लेके पहुंचे हो अज? हेलो, बिल्कुल ठीक है जी, ते बहुत शुक्रिया जी तुसी कॉल कीती है, ते इसे तरह कॉल करते रहा करो ताकि असी थोड़े नाल भी गलबात होंदी रहे, ते प्रोग्राम दे विच पता लगता रहे सानू भी साढ़े दोस्त हाले तक सानू जाग के सुन रहे हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं थोड़ी फरमाइश ते गीत लेकर जा रहा हूँ।
1: ओके जी, बाय।
0: थैंक यू जी।

बिल्कुल जी, अंगूठा दिल वाली वही दिल वाला है। जितने जगह गुरदास मान साहब की आवाज़ भी इतने प्रोग्राम चल रहे जी, सौगात के मैसेज साढ़े को पहुँचे ने जी। आओ देखते हैं कितों कितों मैसेज आए ने। सो मैसेज पहुँचा है जी साढ़े को डेनवर कोलाडो US तो भेजा है मोहन चंद्र जी ने, और इस ही एक मैसेज साढ़े तक होर पहुँचे है जी। मैसेज आया साढ़े को नीदरलैंड तो भेजा है रविंदर पाठक जी ने, और इन्हों के नाल ने जी आशा पाठक जी। एक बड़ा ही प्यारा जहा मैसेज जिमें कि अगर भेजते हैं बिल्कुल सेम उस तरह मैसेज भेजे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर मैसेज के लिए। और आओ जी फिर इन्हों की फरमाइश से एक प्यारा जहा गीत पेश करते हैं जी अमरिंदर गिल साहब के वास्ते।

हौ वारी वन्या कोली वन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन प्रम पर्दा खोला राम। ए कथन उस अकाल पुरख प्रभु तो वारे बलहारे जान दी बात करदा है। अकाल पुरख परमेश्वर बहुत वड्डा आसरा है, वो आप कृपा करके सच्चे गुरु नाल मिलाउंदा है। सच्चा गुरु परम दे पर्दे खोलदा है, तांते फिर ऐसे सच्चे गुरु तो बलिहार जाना चाहिदा है। गुरु दे बचन इलाही बोल हुंदे ने, जिन्हां नूं सरवण करके मन मौलिया जांदा है, मन दे विच खेड़ा आ जांदा है। राग तुखारी विच उचारित शंत विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि मैं उस सच्चे गुरु तो वारने जानी हाँ, ते उसनू अपना मन अर्पण करनी हाँ, जिसदा सोना शब्द सरवण करके मेरा मन मौलिया गया है। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। सरवण करदे हाँ भाई रविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: बेनती, अरदास, जोदड़ी हर प्राणी दे जीवन दा अनिखड़वा अंग है। गुरमत विच कोई भी कार्ज करन तो पहला अकाल पुरख प्रभु दे चरना विच बेनती की जाती है। सुनदिया अमृतपाल कौर होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच बेनती दा संकल्प।
1: बेनती, प्रार्थना, दुआ, अरदास अते रजोई ऐसी शब्द हन जिन्हां शब्दों की हर धर्म विच अपनी पहचान है। बेनती अथवा अरदास बोलां दी नहीं आत्मा की बेबलता है, रूह का गीत है। यह तां तुर अंदरों उठी दुहाई है, यही काया की डंडौत नहीं आत्मा का सिजदा है। बेनती तां है ही परम सत्ता नूं अपनियां लोड़ां थोड़ां विच प्रवेश करन दा सद्दा देना। परमात्मा नूं पुकारन दे इस हक का नाम ही बेनती है, अरदास है। जद कोई भी व्याकुल आत्मा हे मेरे पिता जी की पुकार करती है, हाँ मेरे बच्चे का प्यार हुंगारा उसनूं अवश्य ही प्राप्त हुंदा है। जिथे मनुख अपने आप नूं पूर्ण तौर पर असहाय मजबूर पाउंदा है, कोई वस नहीं चलता, जो कुछ किया है उसका मुल दिखाई नहीं दिता, तो ऐसी हालत में बेनती ज अरदास जन्म लेंदी है। हर इंसान वास्ते भावें किसी अवस्था का होवे अरदास जां बेनती करन दी जरूरत है। बेनती शरीरक लोड़ां तो लैके उच्चियां तो उच्चियां आत्मक लोड़ां दी पूर्ति तक सहायता करती है। अरदास मन नूं निर्माण ते निर्मल बनाउंदी है। बिरथी कदे ना होवेई जन की अरदास। बेनती दी इह किरिया मनुख दी मनुख नाल विहारक सांझ करके तां महत्ता रखदी ही है। इस दी लोड हर प्राणी नूं अकाल पुरख नाल नाता जोड़ी रखन ते बख्शां प्राप्त करन लई भी अति आवश्यक है। साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बणे अरदास। बेनती मनुख विच इक जज्बा है जो उस समय उजागर हुंदा है जद इंसान आम हालत विच ना विचरदा होया बिपता, जोखम, तकलीफ जां दुख ते बीमारी विच ग्रस्या हुंदा है। इसलिए मनुख अपनियां हर प्रकार दियां समस्यावां ते मसलियां दे निपटारे लई रब पास बेनती करदा है, अरजोइयां करदा है, तां जो उस दियां निजी, दुनियावी, समाजी, राजसी ते अध्यात्मक उलझणां तों उस नूं छुटकारा मिल सके। गुरबाणी सानूं सोझी कराउंदी है कि सच्चे दिलों कीती नेक भावना वाली अरदास बेनती रब दी दरगाह विच जरूर सुनी जांदी है। इस लई बेनती दा गुरबाणी दे हवाले विच साडे जीवन विच बड़ा नेड़े दा वास्ता है। गुरबाणी अनुसार सच्ची सुची बेनती अपने मालक तक रसाई करन अते उस दियां बख्शिशां प्राप्त करन दा बहुत शक्तिशाली माध्यम है। सुचजे ते नेक प्रभावां हेठ कीती बेनती पत्थर दिलां नूं पिघला दिंदी है अते इक अजिही मास्टर कुंजी है जो वड्डे तो वड्डे जिंदरे पलां विच खोल दिंदी है। बेनती करन विच कुछ भी नहीं लगदा, पर कई वारी इह बहुत भारी फट्टां नूं मेल दिंदी है ते नफरत नूं प्यार विच बदल दिंदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कभी बाच बेनती चौपाई विच सानूं बेनती करन दी बड़ी सोहणी जाच दसदे हन अते इह वी समझाउंदे हन कि बेनती किस चीज़ की प्राप्ति लई करनी है अते किस शक्ति अगे करनी है। बेनती रूप विच फरमाउंदे हन, देह शिवा बर मोहे है शुभ करमन ते कबहू ना टरो। इस मंग विच निजी स्वार्थ की गल नहीं, मनुखता की बेहतरी लई शुभ कर्म करन विच हमेशा तत्पर रहन की अरजोई है। धन श्री गुरु रामदास जी भी राग सूही अंदर बख्शिश करते हैं कि अकाल पुरख तो बेनती रूप में की कुछ मंगना है। कमाल का बयान करते हैं, कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखण कहताई किरपा करें ता सतगुर मिले हर हर नाम त्याई। चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी परमात्मा तो बलिहारे जाते हैं, उस दे दर्शनों लई दीवाने हन अते हर समय दर्शनों लई ही बेनती करते हैं। बेनती करते ये दान मंगते हैं कि तुसी मैनू अपने दासां दा दास बना के अपने नाल जुड़ी रखो। घट घट के अंतर की जानत वाले प्रभु पासों कुछ मंगण नालों उस वालों दित्तियां बेशुमार दातां लई उस दा धन्नवाद करना ही सोभदा है। मनुख दा मार्गदर्शन करन लई गुरबाणी विच बहुत सारे हवाले मौजूद हन कि मनुख ने जे अकाल पुरख अगे बेनती करके कुछ मंगना ही है तां ओ मंग किहो जी होनी चाहीदी है। बेनती आत्मक विकास लई करनी चाहीदी है, मन नूं टिकाऊ विच लियाउण लई करनी उचित है। इंसानी जीवन विच नेक कीमतां दी कायमी ते बहाली लई करनी वाजब है। चंगे काम करन खातर कदे ना टलन वाली बल, शक्ति, हौसला ते तांग प्राप्त करने

0: बेनती करनी रब नूं पौंदी है, क्योंकि ये उसके अपने जीव जंतु की निष्काम सेवा प्रफुल्लित करती है। दूजे के हितों सेवा रूप में जूझना मनुख नूं आत्मक सुख ते आनंद प्रदान करता है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लईए। परमात्मा दे मिलाप लई बेनती की जाए तो मन नूं बल ते खेड़ा मिलता है। मेल लेहो दयाल टै पई द्वारिया, रख लेवो दीन दयाल भ्रमत बोहारिया। अकाल पुरख की शरण में टिके रहन की बेनती का आनंद ही कुछ वखरा है। हर जियो सदा तेरी सरणाई, ज्यों पावै त्यों राखो मेरे स्वामी, ए तेरी वड्याई। गुरबाणी होर तगीद करती है कि जे बेनती करनी ही है तो निम्रता नूं ग्रहण करन लई करो, हिरदे नूं प्रकाशमान करन लई बेनती करो, उस सर्वव्यापी परमात्मा दे चरण कमलों तक पहुँचने लई अर्ज करो। साडी बेनती अकाल पुरख दे नाम की प्राप्ति लई ही होनी चाहीदी है। ये उत्तम तो उत्तम बेनती है, निष्काम बेनती है, गुरबाणी दे अनुकूल बेनती है। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहूं बेरे। सवाल यह है कि की प्रभु की नेड़ता प्राप्त करने लई बेनती किसी विशेष शब्दावली विच ते किसी उत्तम स्थान ते कीती जावे, तद ही वह प्रवान चढ़ेगी। गुरबाणी अनुसार बेनती दिल तो दिल तक दी रजोई है, जो किसी भी भाषा की मुथाज नहीं। बेनती जा रजोई चुप रह के भी की जा सकती है, किसी भी थान ते किसी भी समय की जा सकती है। बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीचे अरदास। बंदगी दे रस्ते उत्ते बेनती जा अरदास हर एक पांधी लई इतनी जरूरी है जितनी कि अन्ने लई डंगोरी।
1: गुरबाणी विच बेनती दा संकल्प, ये वार्ता सुना रहे सन अमृतपाल कौर। जीव रूप स्त्री अकाल पुरख दे चरणा विच उस प्रभु दे दर्शन दीदार लई बेनती करदी है। उस परमेश्वर नूं अपना मित्र समझदे होए ओ प्रभु दी पाल करन वास्ते बेनती करदी है। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंती यार, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खुजंती यार। सरवण करदे आ भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरों खोजंतिया। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

पागल मनोरथ पूरी आशा जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन को उपाया शब्द गुरु पर कास्यो हर रसन बसाया गुर

खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरयो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आज जो नहीं संभव्यो सुजस कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निधान गुर रामदास अर्जुन वर्यो पारस परस प्रमाण साध जीवन अर्जुन अमोल आजोनी संपो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंपो अगह गैन प्रम प्रांत दैन शीतल सुख दातो असंभो उद्वयो पुरख पूरण विदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड़ भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारण कल सहार तो

अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमरत छत्र गुर रामै दियो। गुर रामदास दर्शन परस, कह मथुरा अमृत बैन। मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन।

आदि पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जग मग तेज भूमंडल छायो पारस परस

जगत्र पार जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परम पर पुरख स्यों प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों मथुरा को प्रभ।

0: जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बोतायो कल घोर समुंदर में बूढ़त थे कब हो मिट है नहीं रे पछतायो तत बिचार जहे मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ आयो कल समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जान्यो भयो तेह समसर सोई तरन गगन नव खंड मय जोत सब रूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर
1: अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर टुलै नाम अमृत मुख लियो गुरु अर्जुन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पह गयो हर बंस जगत जस संच रहो सो कवन कह श्री गुर मोयो
2: देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तैं बैठायो रहस कियो सुर देव तोह जस जय जय जंपै असुर गेते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो काटे सो पाप तिन नरों के गुर राम दा जिन पायो शतर सिंहासन प्रथमी गुर अर्जन को दे आयो
3: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमृत।

अंत न पावत देव सभै मन, इंद्र महाशिव जोग करे। हुन वेद बरंच विचार रहो, हर जाप न छाड़ियो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत

कै जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पातिसा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सच्चा पातिसा, हो सिर साह दैसा, हो जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा, हो सजन सच्चा पातिसा, हो सिर साह दैसा, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसा हो। सत

शाहदान प्रसादान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मात पात दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरतामां दे जिन्ना तो पंथ नूं विसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बगसो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान ने ओटिया दी ओट तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बखसना सुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बखसो सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हो बन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

0: जोग जोग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सात जोग रात संतोक का धर्म ग्रथवा हो तेरे तेरा जद का जोर अग्रथवा हो द्वापर रथ तपे का सात अग्रथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़े अगे रथवा हो महला पहला
1: काम कहे से तंबर स्वामी सत में अच्छे साथ रहे सबको सत समावेर करे अपर पूराम नाम देवा में सु नाय ले प्रच जैनन को मुखंतर पाए जुग में जोर छली चंद्रावल पान किसम जात भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद तर्म हुआ नाउ खुदाई लो पया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सद

तक पाओ कतिया बमन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए कोई पुराना सुटिया पी फिर पाइए हो नानक तगना टुटई जे तक हुए।

0: जप माली तान मलिशा खाई अंतर पूजा पड़क ते बस संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिग कहे रहया पर पूरा नाम देवा महसू कल मैं बेद थर्मन हुआ ना खुदाई अलो पया नील बस्तर ले कपड़े पैरे तुरक उठानिए मलकिया मानस खाने कर निवास श्री वगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दो ना पयावे ओई रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रया भरपूर मथे टिका तेड धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई
0: नील बस्तर प्रमाण मलेश
1: ले पूजे।